0: वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड
1: हमी जन्मजात नहीं शिकारियों शिकारी
2: पूरे टाइलेट मलाई चाहिए
3: BFX सिनेमाज कोराही दश नारायणपुर सौडीकुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: वायनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिंग टाइम। यदि तपाईं पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। दाङ जिल्लामा आज पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएल बा। स्थानीय स्रोतको उपयोग स्वामित्व ओ सहभागिता पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला हमार प्रतिबद्धता कना नारा सहित पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएल हो। जिल्ला खोप समन्वय समिति दाङका आयोजनामा कार्यक्रम हुइल रह दाङ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा सभामा सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री रामजी प्रसाद घिमिरेले खोप सुनिश्चिततामा उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर पटुआ रखल। पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्वास्थ्यक लाग एक ठो महत्वपूर्ण आयाम रलग पटुआ रखल। सबको मनै हुक्र स्वस्थ हुइल सिकल देशमा समृद्धि हासिल कर सिर्जना हुइल घोषे लुम्बिनी प्रदेश सरकार से सबको नागरिकमा स्वास्थ्यका पहुँच पुगेक लाग पर्लक उहाँ धारणा धरल रह। ऊ अवसरमा मन्त्री घिमिरेसे स्वास्थ्य नागरिक से राष्ट्र निर्माणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न हुइल घोषे खोप अत्यन्तै आवश्यक र लगभटुवा रखल। उसको स्वास्थ्य मन्त्री घिमिरेसे दाङहण पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा सबको जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वयंसेविका हुनकला धन्यवाद व्यक्त गरल रह। आही फे स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्न बाँकी रहेको खर्चे प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्दै जैना उहाँको धारणा रहन। ऊ अवसरमा मन्त्री घिमिरेसे उपफ्यारक बजेट हन सबको माग पूरा गर्न निश्चयलग बटुवा रखल। बजेट अभावको कारण विभिन्न विषयमा सम्बोधन गर्न निश्चयकिलक उहाँको गाहिर रहन। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चल राज पाण्डे कोराई महानगरपालिका नगर प्रमुख नरूलाल चौधरी लमई नगरपालिकाको कार्यवाहक नगर प्रमुख लक्ष्मी योगी राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट लगायतले स्वास्थ्य सुधारको मुख्य आधार जो खोप हुइल घोषे अपनक भूमिका महत्व भूमिका प्रति शब्द सकारात्मक रलक बटवाइल रह। लमई नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी हुकनक्से सेवा सुविधा सुधारका माग गर्दै उद्योगमा तालाबन्दी करलबाट कर्मचारी हुकनक्से विभिन्न माग धैकन व्यवस्थापन हुन ज्ञापन पत्र बुझिती माग पूरा निभएसम्म आन्दोलन जारी रहन चेतावनी दिएरखल। कर्मचारी हुकनक्से हाल कुछु कर्मचारी केकेल तलब वृद्धि गरिल कति सबको कर्मचारीका समान रूपमा तलब वृद्धि करपर्ना माग धरलबाट लम्बा समयसे कार्यरत कर्मचारी हुकनक्स उचित मूल्यांकन कैकन स्तर वृद्धि तथा पदोन्नति करपर्ना यी सेवाघारी उपलब्ध गरिदिए ऐलक सेवा सुविधा कटौती नै करपर्ना सबको कर्मचारी हुकनकला अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध करपर्ना हुकनक्का माग बाटिन्। ज्ञापन पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम कर्मचारी हुकनक्से पैते ऐलक तलब भत्ताको 60% आधार मानकन जम्मा करपर्ना भोजन तथा आवास सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान कैकन समयानुकूल व्यवस्था मिलाइपर्ना तथा स्थानीय युवाहन रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिएपर्ना उल्लेख गरिल बा। उस्तका कोनो कर्मचारी से राजीनामा दिएपछ बाहर से लो कर्मचारी अन्ना प्रवृत्ति अन्त्य कैकन उद्योगमा जो कार्यरत कर्मचारी हुकनकला आवश्यक तालिम उचित पारिश्रमिक पदोन्नति तथा अवसर प्रदान गर पर्ना माग फे गरिल बा। मागको सुनवाई निहुसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम जारी रहना जनागिल बा। लमही सामुदायिक डायलिसिस सेन्टरमा मृगोलाका डायलिसिस करिना लौ बेरमा कनक्से पाला निपाइबेर उपचारमा गम्भीर समस्या देखिल बा। नियमित सेवा लेतिरलक बिरम्या बाहेक 50 से बढ़ी लौ बेरम्या डायलिसिसको पाला कुर्कन बाद वैश्य बाध्य हुइलक सेन्टरका प्रमुख सुशील पाण्डे जानकारी दिएरखल। मृगोला फेल हुइलक बेरम्या हुकनक संख्या निरन्तर बढ़ती गइल पाछ लौ बेरम्या हुकनकला तत्काल सेवा दिए निषेक गिलक हो। नियमित डायलिसिस आवश्यक पर्ना बेरम्या हुकनक्से समयमा जो सेवा निपाइबेर हुकनक स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्न जोखिम बरल बा। यही से बेरम्या हुकनकसँग हुकनक परिवार हनफे भारी मानसिक ओ आर्थिक भार परल बा। हाल लमही सामुदायिक डायलिसिस सेन्टर से 58 जना हुकनक्से नियमित रूपमा डायलिसिस सेवा लेती रहल बाट उपलब्ध जनशक्ति ओ उपकरणको अधिकतम उपयोग करगिल सेफे बढ़दो बिरामीको चापको कारण लौ बिरम्या भर्ना कर सेक्ना अवस्था निरलक प्रमुख पाण्डे बटुवा रखल। उहाँको अनुसार दाङकेल निहोकन कपिलवस्तु प्युठान रोल्पा रूकुम सल्यान ओ कञ्चनपुर लगायत विभिन्न जिल्ला समेत बिरम्या उपचारको लागि लमै ऐना करलबाट सेवा क्षेत्र फराकिलो हुति गइल सके आवश्यक पूर्वाधार विस्तार हुइने स्याकबेर समस्या सन् बढ़ती गई रहल।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट श्री विपन्न वर्गका विद्यार्थीको अध्ययन म सघिना उद्देश्य से राज्य कोष से अप्न क्लाक प्राप्त हुना तलब भत्ता से अक्षय कोष स्थापना गरिरहल आफ्न पालिकाका सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा अभिभावक विहीन विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका शैक्षिक उत्थानका लागि 1,01,000 रूपियाँका अक्षय कोष स्थापना गर्लक विद्यालय व्यवस्थापन समिति जना राखल अप्न क्लाक मानसिक रूपमा प्राप्त मासिक रूपमा प्राप्त हुना 33,000 रूपियाँ से अक्षय कोष स्थापना गर्लक गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्ट बटुवा राखल यसबीचमा राप्ती गाउँपालिका से मुक्त कमैया कमलरी समुदायको जीविकोपार्जन सुधार तथा आय आर्जन वृद्धि गर्न उद्देश्य से 50 घर परिवार माउ बाख्रा वितरण गरिराखल गाउँपालिकाका आर्थिक वर्ष 2082-83 का वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित मुक्त कमैया कमलरी आय वृद्धि तथा श्री विकास कार्यक्रम मार्फत 50 जना लाभग्राही हन प्रति परिवार एक ठो का दर से माउ बाख्रा वितरण गरिलक हो। कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय जार्से क्रस हुइलक उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिलक गाउँपालिका जना राखल उठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटे अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसक्कु संग्रहसँग मिसालिक राम चौधरी विदाई टू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोरखा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़नी नसा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराईदाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिन्दी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने तो मालिक हम तो भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?